जुदा होने में एक जुनून सा है। तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है। ए,

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर।
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये है 18 जून 2026 की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वैशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे। आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरा गिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं, जिनकी धरती पर यह कार्यक्रम आज सुना जा रहा है। दोस्तों, आज मेलबर्न के श्रोताओं के लिए मेरे पास है नीफा, यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के क्लोजिंग कर्टन नाइट पर प्रीमियर होने वाली बॉबी देओल की फिल्म बंदर के दो पासेस। मैं जानती हूँ, बीते दिन नबील ने आपसे आज विजेताओं के नाम बताने का वादा किया था, लेकिन आपकी ही डिमांड पर हम ये कॉन्टेस्ट एक और दिन के लिए खोल रहे हैं। तो बताइए मुझे, बंदर फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं? और अगर आप मेलबर्न आधारित हैं, मेलबर्न स्थित हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो आप अपने जवाब के साथ अपने सिटी का नाम जरूर भेज दें हमें। नंबर आप जानते हैं 04397997667। कार्यक्रम में आज सबसे पहले चर्चा करेंगे संक्षिप्त समाचार की, जिसके बाद बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच हुई शांति संधि की। उसके बाद आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे पॉलिन हैंसन के नेशनल प्रेस क्लब को दिए संबोधन की, और फिर बात करेंगे पैसिफिक रीजन में बढ़ रही अवैध ड्रग तस्करी की। अंत में चर्चा करेंगे कि क्या हो तब जब शार्क से हो जाए सामना। तो ये सारी चर्चाएं आज के कार्यक्रम में रहेंगे और रहेंगे कुछ गीत भी। कोई गीत सुनना चाहते हो तो मुझे बता दीजिए 04397997667 पर। इसी के साथ नीफा के कर्टन क्लोजर पर प्रीमियर होने वाली बंदर फिल्म के डायरेक्टर का नाम बता करके आप इस प्रीमियर का हिस्सा भी बन सकते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है। जल्दी जल्दी भेजिए संदेश, तब तक मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ आज के संक्षिप्त समाचार। आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। लेबर सरकार अपने बजट में प्रस्तावित टैक्स बदलावों को लेकर उठ रही आलोचनाओं को कम करने के लिए छोटे व्यवसायों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स में रियायतों का दायरा बढ़ाने जा रही है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी और कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने घोषणा की है कि छोटे व्यवसायों के लिए मौजूदा 50% एक्टिव एसेट CGT रियायत की पात्रता सीमा को $20,00,000 से बढ़ाकर $1,00,00,000 वार्षिक कारोबार तक किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से लगभग 27,00,000 छोटे व्यवसायों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए एक नई कर रियायत भी प्रस्तावित की गई है। वहीं विपक्ष नेता एंगस टेलर का कहना है कि लेबर सरकार द्वारा घोषित ये बदलाव पर्याप्त नहीं है और इससे छोटे व्यवसायों की चिंताओं का पूरी तरह समाधान नहीं होगा। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट कमीशन ने बिजली मूल्य निर्धारण प्रणाली की व्यापक समीक्षा के बाद ऐसे नियमों का प्रस्ताव रखा है जिनके तहत ऊर्जा कंपनियों को ये बताना पड़ सकता है कि उनके कितने ग्राहक बेहतर और सस्ती योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। इस समीक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य तथाकथित लॉयल्टी टैक्स से निपटना है। ये वह स्थिति है जब ग्राहक शुरुआती छूट वाली योजनाएं समाप्त होने के बाद महंगी योजनाओं पर बने रहते हैं और अधिक भुगतान करते हैं। प्रस्तावों के तहत ऊर्जा कंपनियों को लंबे समय से जुड़े ग्राहकों को ये भी बताना पड़ सकता है कि वे सस्ती योजनाओं पर जाकर कितनी बचत कर सकते थे। वहीं सिडनी के दक्षिण पश्चिमी उपनगर कैब्रामाटा में स्कूल की छुट्टी के बाद हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक 5 वर्षीय बच्ची और उसके 14 महीने के भाई की मृत्यु हो गई है। पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर लगभग 3:15 बजे दोनों बच्चे अपनी मां के साथ सड़क पार कर रहे थे, तभी एक SUV वाहन ने उनके प्रैम को टक्कर मार दी। मृत बच्चे की पहचान 5 वर्षीय कैथरीन और 14 महीने के हैरी के रूप में हुई। इस हादसे के बाद स्थानीय समुदाय में शोक की लहर है और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में नेट ओवरसीज माइग्रेशन लगभग 3 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2025 में यह आंकड़ा लगभग 301,000 रहा, जो कि पिछले 12 महीनों की तुलना में करीब 9% कम है। नेट ओवरसीज माइग्रेशन उस अंतर को दर्शाता है जो ऑस्ट्रेलिया में बसने आने वाले लोगों और देश छोड़ के जाने वाले लोगों की संख्या के बीच का होता है। इस बीच प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को शामिल करने पर 2025 में ऑस्ट्रेलिया की आबादी 1.5% बढ़कर 2,78,00,000 हो गई। कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि लेबर सरकार के सत्ता में आने के समय प्रवासन दर काफी ऊंची थी, लेकिन अब इसमें उल्लेखनीय कमी आ गई है। वहीं न्यू साउथ वेल्स के डिप्टी कोरोनर हैरियट ग्राहम ने कहा है कि लगभग 40 वर्ष पहले टैमवर्थ में एक अबोरिजिनल किशोर की मृत्यु की जांच पर नस्लवाद का प्रभाव पड़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। 17 वर्षीय मार्क हेन्स का शव जनवरी 1988 में टैमवर्थ के बाहर रेलवे पटरियों पर मिला था। पोस्टमार्टम में पाया गया था कि गोमेरॉय समुदाय के इस किशोर की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। प्रारंभिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया था कि मार्क या तो स्वयं पटरियों पर लेट गए थे या फिर भ्रमित अवस्था में वहां पहुंचे थे। हालांकि उनके परिवार ने लंबे समय से इस मामले में किसी आपराधिक साजिश या संदिग्ध परिस्थिति की आशंका जताई थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान सरकार ने अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम पुख्ता होने का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि उनका देश मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता का समर्थन करना चाहता है तथा क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों में भी योगदान देने के लिए तैयार है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जापान द्वारा युद्धपोत भेजने या समुद्री बारूदी को हटाने के अभियानों में शामिल होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और अंत में खबरें भारत से। भारत और ब्रिटेन के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी CETA 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की द्विपक्षीय बैठक में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत UK संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारतीय किसानों, श्रमिकों, MSME और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। भारत और ब्रिटेन ने इस समझौते पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए थे और अब ये 15 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। इसी के साथ 18 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब चर्चा अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते की। भाई, इसका यूनाइटेड नेशंस और कई और देशों के नेताओं ने स्वागत किया है, जिससे मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी संघर्ष खत्म होने की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। लेकिन लेबनान में जारी तनाव और सैन्य गतिविधियों के चलते इस समझौते की स्थिरता पर सवाल बने हुए हैं। आइए सुनते हैं इसकी पूरी खबर नबील हसन के साथ।

0: यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया है, ये कहते हुए कि ये समझौता संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस शांति समझौते से अपनी सरकार को अलग रखा है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने देश के हितों की रक्षा के लिए लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। ये शांति समझौता युद्ध के सभी मोर्चों पर युद्ध विराम पर निर्भर करता है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। तो सवाल ये है कि ये समझौता कितना सुरक्षित है। SBS हिंदी पर मैं हूँ नबील हसन।
1: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by

0: hits from home.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: War with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front. Shahbaz Sharif announced the permanent and immediate end of the war on all fronts of the U.S. war against Iran and its allies. The Prime Minister of Pakistan announced an agreement to end the U.S. war against Iran has been reached.
3: America ke rashtrapati Donald Trump ne social media par is samjhote ki pushti ki aur Strait of Hormuz ko toll free kholne tatha America ke naval blockade ko turant hatane ka aadesh diya. America aur Iran is shanti samjhote par shukrawar yani 19 June ko Switzerland mein hastakshar karne wale hain. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का कहना है कि अगर ईरान अपनी कमिटमेंट्स का पालन करता है तो यह समझौता पूरे क्षेत्र को बदल सकता है.
4: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war, it's going to make the Middle East more investable, it's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
3: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने भी इस पीस डील का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि महीनों से चल रही लड़ाई के असर खत्म होने में अभी समय लगेगा. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक ऐसे स्थायी समझौते के प्रयासों का समर्थन करेगी जिससे इस युद्ध को खत्म किया जा सके, जिसमें मिडिल ईस्ट में हजारों लोगों की मौत हुई और एक हिस्टोरिक एनर्जी क्राइसिस भी पैदा हुआ.
5: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
3: लेकिन ये समझौता युद्ध के सभी मोर्चों पर सीजफायर पर निर्भर करता है. समझौते पर हस्ताक्षर से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि वो ईरान समर्थित हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखकर इस समझौते को ब्लो ना करें. हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो सदन लेबनान को एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखेंगे ताकि नॉर्दर्न इजरायल के निवासियों को हिजबुल्ला के हमलों से सुरक्षित रखा जा सके. तो सवाल ये है कि ये पीस डील कितना सुरक्षित है. जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एनालिस्ट लॉरा ब्लूमेनफेल, जो पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में मिडिल ईस्ट पॉलिसी एडवाइजर रह चुकी हैं, उन्होंने बीबीसी को बताया कि इस संघर्ष का कोई आसान समाधान नहीं है.
6: I wouldn't call this a peace deal. I would say it's more of a hostage deal because the ransom paid by the United States to lift the blockade, of course, is going to add up to about $8 billion of oil revenues that Iran is going to reap the benefit from over those 60 days while we have extended negotiations with Iran.
3: उन्होंने कहा कि शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले बहुत कुछ हो सकता है.
6: 5 days in the Middle East is 50 years anywhere else in the world. Spoilers everywhere. There's going to be some sense, I think, of signer's remorse when each side starts to spin things in their favor. Not even so much about the deal, but about the day after the deal. Because after all, this is a struggle beyond just the nuclear issue about who has influence in the region. The revolutionary ideology of the Ayatollahs and of Iran has been to, you know, get rid of the great Satan, which is the United States, from the region. And of course, America wants to create a kind of oil happy pot of gold for the United States, and that would be in the Gulf as well. So this is about larger things than that. So there'll be some signer's remorse.
3: यूरोपियन नेशंस ने पहले ही मिडिल ईस्ट में संघर्ष खत्म करने के समर्थन का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने दोहराया कि उनकी प्राथमिकता ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए. फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन के साथ एक मीडिया अपीयरेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये समझौता पहले ही साइन हो चुका है, जबकि आधिकारिक साइनिंग सेरेमनी ईरान के साथ शुक्रवार यानी 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली है.
7: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out.

0: Now on Friday it'll be completely opened.
1: SBS News के एलन ली की ये रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
2: और इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त पहले अंतराल का। अंतराल के उस पार करेंगे चर्चा पॉलीन हैंसन के दिए गए नेशनल प्रेस क्लब को संबोधन में। क्या कुछ चर्चा रही थी, किस तरीके से उन्होंने प्रवासन पर बात की है, मीडिया पर बात की है और कई सारी चर्चाएं की हैं, ये सब कुछ लेकर के आएंगे आपके लिए एक रिपोर्ट में। लेकिन आपको मैं ये याद दिलाती चलूँ कि नीफा यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो कर्टन क्लोजर है मेलबर्न में, उसमें बॉबी देओल की मूवी का एक प्रीमियर हो रहा है। बंदर नाम की इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम आप हमें बता सकते हैं 0439799767 और इस फेस्टिवल के कर्टन क्लोजर में इस प्रीमियर का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर फिर से 0439799767। आप भेजिए अपने संदेश और मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होती हूँ। SBS हिंदी से जुड़े रहिएगा।
3: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेक वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
4: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
5: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
3: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS Learn में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
6: SBS Audio
4: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
7: यही ज्यादा दिया। चुनबा हाल में।
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
11: Far from the partisan politics.
4: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
12: sbs.com.au/audio

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: तो मुझे वो भी बता सकते हैं 0439-799-767 पर. और अब आइए सुनते हैं नताशा कॉल की ये रिपोर्ट.
2: सत्रह जून को वन नेशन पार्टी की नेता पॉलिन हैंसन ने पहली बार नेशनल प्रेस क्लब में अपना संबोधन दिया. अपने भाषण में उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म, इमिग्रेशन और मीडिया पर निशाना साधा. पॉलिन हैंसन का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया को मल्टीकल्चरल देश नहीं बल्कि मोनोकल्चरल राष्ट्र होना चाहिए. उन्होंने पब्लिक ब्रॉडकास्टरों की भी आलोचना की और कहा कि वन नेशन पार्टी की आधिकारिक नीति के तहत SBS को मिलने वाली सरकारी फंडिंग समाप्त करने का प्रस्ताव शामिल है. दशकों तक राजनीतिक मुख्यधारा से दूर रहने के बाद बढ़ती लोकप्रियता के बीच पॉलिन हैंसन ने पहली बार प्रतिष्ठित नेशनल प्रेस क्लब के मंच से अपनी बात रखी.
3: Every attempt has been made for years to silence me. In fact, there are always some people, usually a lot of people, who get offended by what I say or do, even offended by my very existence.
2: उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया को विभिन्न देशों और संस्कृतियों से आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण अपनी पहचान और सामाजिक एकता के लिए खतरे का सामना करना पड़ रहा है.
3: At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural. Australians must live under the one cultural umbrella.
2: पॉलिन हैंसन ने उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर भी निशाना साधा जो घर में अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं. उन्होंने कहा कि अगर लोग एक ही भाषा नहीं बोलेंगे तो समाज में एकता लाना मुश्किल होगा. उनके भाषण के दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रदर्शन हुए और कुछ देर के लिए भाषण में बाधाएं आईं. वहीं हॉल के अंदर उनके पीछे एक बैनर भी दिखाया गया जिसमें वेतन बढ़ोतरी, चाइल्ड केयर सहायता, पेंशन और सस्ते आवास से जुड़े मुद्दों पर उनके रुख की आलोचना की गई. इस घटना की जांच के लिए ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस को कहा गया है. नेशनल प्रेस ने कहा कि प्रदर्शन में बाहरी लोगों की भूमिका थी और क्लब के किसी कर्मचारी या ठेकेदार का इससे कोई संबंध नहीं था. इस बीच पॉलिन हैंसन ने अपनी पार्टी की व्यवसाय समर्थक नीतियों के बारे में भी बात की.
3: Industrial relations, I can assure you, needs a complete overhaul because it's not working. Businesses also tell me you can't sack people these days. They're on their phones, they don't work, they don't turn up, they actually are lazy. And businesses are tied to it. They've had enough.
2: उन्होंने संबोधन में मीडिया की भी आलोचना की. द गार्डियन ने सवाल उठाया कि क्या पॉलिन हैंसन ने अपनी बेटी को सरकारी फंड वाली नौकरी दिलाने में कोई भूमिका निभाई थी. पॉलिन हैंसन ने जवाब दिया,
3: I've never seen a person that's such a trashy journalist, you know, and what you put out all the time, you've got this obsession with constantly trying to pull down myself, my party, or Mrs. Reinhart. Whatever you do, you will be banned. Don't come near me for an interview.
2: One Nation Party leader पॉलिन हैंसन ने पब्लिक ब्रॉडकास्टरों पर भी निशाना साधा और बताया कि मेट्रो क्षेत्रों में ABC को सब्सक्रिप्शन सेवा बना दिया जाएगा तथा SBS की फंडिंग बंद कर दी जाएगी.
3: The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it.
2: तो इस बयान के बाद SBS की भाषा सेवाओं को लेकर SBS की चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट एना हैंडरसन के साथ पॉलिन हैंसन की एक तीखी बहस हुई.
4: I'm talking about in 60 languages to help people integrate into Australia.
3: I'm sorry. I can understand your question. You're going to be without a job. So anyway, I can understand that.
4: Isn't that part of your platform? Isn't that part of your platform, Senator, to integrate people from other countries into Australia to help them become Australian?
3: No, I want them to be able to learn to speak English before they get here to get

0: SBS स्पोर्ट खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
1: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
0: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
2: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
3: SBS साउथ

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
2: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को और हम चर्चा कर रहे हैं पैसिफिक देशों में बढ़ती अवैध ड्रग्स तस्करी की और इसका लैटिन अमेरिका के देशों से क्या अलग संबंध है और इन दोनों क्षेत्रों को किस तरह से रणनीतिक रूप से अब यही तस्करी करीब लेकर के आ रही है. एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है आर पैसिफिक के हवाले से आ रही है. मैं और आप मिल करके सुनते हैं, लेकिन आपको याद दिलाती चलूं कि भाई नीफा के कर्टन क्लोजर के लिए मेलबर्न में हमारे पास दो डबल पासेस उपलब्ध हैं फिल्म बंदर के, जो कि बॉबी देओल की नई फिल्म है. इसका प्रीमियर हो रहा है. आपको बस ये करना है कि आपको हमें बताना है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं और ये मेलबर्न के श्रोताओं के लिए खास गिव अवे है. आप अपने नाम के साथ सही जवाब हमें भेजें अपने ईमेल आईडी के साथ और हमें ज़रूर बताएं कि आप मेलबर्न से हैं या नहीं हैं. 04397997 हमारा नंबर है. इसी के साथ मेरे पास पीयूष का संदेश आया है, माफ कीजिएगा, व्हीलर्स हिल से. और मेरे पास संदेश आया है राजेंद्र वोरा जी का और इन दोनों लोगों ने मुझे गानों की रिक्वेस्ट भेजी है जो मैं लाने की कोशिश करूंगी. लेकिन फिलहाल आर पैसिफिक के हवाले से ये रिपोर्ट.
3: SBS ऑस्ट्रेलिया भर के आकाश, भूमि और जलमार्गों की देखभाल करने वाले पारंपरिक संरक्षकों तथा उनके आपसी निरंतर संबंधों को सम्मान पूर्वक प्रणाम करता है. SBS Examines Our Pacific एक विशेष श्रृंखला है जो प्रशांत समुदायों की यात्राओं, अनुभवों और उन मुद्दों को सामने लाती है जो ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ते हैं. नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आपके लिए ला रही हूँ SBS Examines Our Pacific. हजारों वर्षों तक पैसिफिक ओशन में प्राचीन नाविक दोहरे ढांचे वाली डोंगियों यानी डबल हल्ड कनूज के सहारे लंबी यात्राएं करते रहे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वही समुद्री मार्ग महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी की गतिविधियों का केंद्र बन गया है.
4: International and organized crime respects no border.
3: पीजी पुलिस बल के कमिश्नर रुसियाते तुद्रवू के लिए ये एक चिंताजनक हकीकत है. फिजी में आयोजित पहली पैसिफिक ट्रांसनेशनल क्राइम समिट में उन्होंने इस बढ़ते खतरे पर चिंता जताई. साल 2026 के पहले 6 महीनों में पैसिफिक क्षेत्र में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 17 टन से अधिक अवैध मादक पदार्थ यानी इलीगल ड्रग्स जब्त किए, जिनमें अधिकांश कोकीन थी. इन नशीले पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत लैटिन अमेरिका रहा, जबकि इनके मुख्य गंतव्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे. लेकिन फिजी जैसे द्वीपीय देश अब केवल मादक पदार्थों की तस्करी के रास्ते भर नहीं रह गए. वे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स यानी वितरण केंद्रों और फिर लाभदायक स्थानीय बाजारों में बदल गए हैं. इसके चलते एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संकट सामने आ खड़ा हुआ है. इसी शिखर सम्मेलन में क्रिसी बैरेट ने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के सदस्य देशों और लैटिन अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत बनाना था.
5: I'm also proud to announce funding from the AFP and New Zealand Police, Australian Border Force and New Zealand Customs to launch an international joint investigations team partnering with the Colombian National Police to help stop illicit drug shipments coming to the region.
3: लेकिन प्रशांत देशों और लैटिन अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग की

0: वजह केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नहीं, चिली 2021 में पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का डायलॉग पार्टनर बना था। चिली का रापा नुई, जिसे ईस्टर द्वीप भी कहा जाता है, पॉलिनेशियन ट्रायंगल के पूर्वी छोर पर स्थित है। यही भौगोलिक और सांस्कृतिक जुड़ाव चिली को पैसिफिक क्षेत्र से विशेष रूप से जोड़ता है। मार्च 2026 में अर्जेंटीना के विदेश मंत्री पाब्लो क्वानो ने कहा था कि उनका देश पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का डायलॉग पार्टनर बनने पर विचार कर सकता है। ब्यूनोस आयर्स स्थित एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ पाब्लो कॉनब्लम के अनुसार, पैसिफिक क्षेत्र में अर्जेंटीना की रुचि का कारण वास्तव में काफी सीधा है।
1: अर्जेंटीना इज अंडर दिस गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट, नियोलिबरलिज्म, pro government. They are talking all the time about open our borders, capital inflows, investments, trading goods and services without any obstacles. That's something that it's a core of the external political ideology.
0: प्रोफेसर कॉनब्लम का कहना है कि अमेरिका के मौजूदा प्रशासन के साथ भू राजनीतिक नीतियों और प्राथमिकताओं में समानता भी अर्जेंटीना की इस रुचि के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है।
1: If there's a possibility to join a group which is close to the Western democratic and capitalism side, if you want, they're going to try to be there.
0: इस विषय पर अर्जेंटीना के राजदूत से बातचीत के लिए ऑस्ट्रेलिया स्थित एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना इन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साक्षात्कार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। हालांकि न्यूजीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी की एसोसिएट प्रोफेसर एना पॉल्स ने इस विषय के व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ को समझाने में मदद की।
2: And yes, the United States has made it very clear that they're expecting more from their allies and partners, that they're expecting countries like Australia, for example, to step up in the region and in the broader Asia Pacific as well. There have been strong concerns in the United States and in Washington particularly about the role of China in Argentina.
0: दूरी द्वीपीय यानी आइलैंड देशों और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाने में एक बड़ी बाधा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अर्जेंटीना के साथ घनिष्ठ संबंधों से पैसिफिक देशों को क्या लाभ है। अप्रैल 2026 में वनातू ने अपने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रजिस्टर से 3 चीनी मछली पकड़ने वाले जहाजों को हटा दिया। इससे पहले अर्जेंटीना के अधिकारियों ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित यानी इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU मछली पकड़ने के आरोप में इन जहाजों पर जुर्माना लगाया था। ये घटना दिखाती है कि समुद्री सुरक्षा, मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और नियमों के पालन जैसे क्षेत्रों में अर्जेंटीना और पैसिफिक देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं।
2: And so there is a clear need for greater coordination in order to be able to crack down on illegal fishing.
0: डॉक्टर पॉल्स का कहना है कि लैटिन अमेरिका के साथ बढ़ता जुड़ाव पैसिफिक देशों को जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक साझेदारियां और साझा हितों वाले समूह बनाने का अवसर भी देगा। प्रशांत क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि दिखाने वाले अपेक्षाकृत कम परिचित देशों के वास्तविक उद्देश्यों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। मई 2026 में वनातू के प्रधानमंत्री जोथम नेपैट ने पुष्टि की कि उनकी सरकार चाइना और ऑस्ट्रेलिया के साथ दो बड़े सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वनातू के कुछ खास विकास साझेदार अपने हितों के लिए देश के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने या उसकी स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: With respect to signing of the two agreements, the Nakamal with Australia and the other agreement with China, you know, there's a real sense that the spaces for discussion for Talanoa in the Pacific, you know, the Pacific Islands Forum leaders meeting, that those spaces are becoming increasingly crowded out by the geopolitical interests and priorities of non-member states.
0: जबकि पैसिफिक देशों को बाहरी शक्तियों की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अपनी विकास संबंधी आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है, वहीं फिजी के पुलिस आयुक्त रुजियाटे तुद्रुवु के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता इलीगल ड्रग्स की तस्करी से बढ़ते नेटवर्क और उसके प्रभावों से निपटना है.
3: We are united in our resolve in protecting our Pacific, our people, our future.
0: Our Pacific के इस अंश को तविशेक शर्मा और त्वेपोला इवान शार्टन द्वारा तैयार किया गया और प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने. अधिक जानकारी के लिए SBS Examines Our Pacific देखें.
4: और इसी के साथ वक्त एक छोटे से अंतराल का. अंतराल के उस पार जानेंगे कि क्या हो अगर आपके सामने अचानक से शार्क आ जाए. बहुत सारी चर्चाएं हैं, आपके बताए गए गीत भी हैं, सब कुछ लेकर के आऊंगी इस ब्रेक के बाद. बने रहिए SBS हिंदी पर.
5: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
6: SBS Chill. पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें. SBS Chill सुनने के लिए SBS Audio ऐप पर जाएं.
7: SBS South Asian.

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
2: SBS किक ऑफ
3: The new music station celebrating football anthems from around the world.
4: It's time for Africa.
2: It's live now
3: on DAB Radio, the SBS audio app,
2: online and SBS on demand.
5: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
6: और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को। मेरे पास मेलबर्न से कुणाल अदलखा जी का, जफर साहब का और विजय जी का और इसी के साथ विक्रम जी का भी सही जवाब आ गया है नीफा के गिव अवे कॉन्टेस्ट के लिए। और इसी के साथ हम इस कॉन्टेस्ट को बंद भी कर रहे हैं। आपको कल विजेताओं के नाम बता दिए जाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं और समझते हैं कि बढ़ते शार्क अटैक्स के को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भर में हमने पिछले एक माह में करीब 3 शार्क अटैक्स देखे हैं। तो क्या हो अगर आप पानी में जाएं और भगवान ना करे लेकिन आपके सामने एक शार्क आ जाए, तो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, इस पर चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में।
7: हजारों किलोमीटर लंबी ऑस्ट्रेलियाई तटरेखा तैराकी का एक खुला न्योता है। तैराकी ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है, चाहे फिर वो गर्मी के मौसम से छुटकारा पाने के लिए हो, चाहे कसरत के लिए या फिर सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिए। तैराकी के इस शौक में एक खतरा यह भी है कि आपका सामना शार्क, जहरीली जेलीफिश या स्टिंगरे के साथ हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप इस खतरे को संभालना भी जानें और यह भी समझें कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के समृद्ध समुद्री पर्यावरण में शार्क की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क, हैमरहेड शार्क, बुल शार्क और कई और प्रकार की रीफ शार्कें। ये समुद्री सेहत और संतुलन बनाए रखती हैं, जहां न ये केवल खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के शीर्ष पर

0: रहती हैं बल्कि समुद्री मेहतर का भी काम करती हैं। डॉक्टर पॉल बुचर शार्क दंत विशेषज्ञ हैं। वे समझाते हैं कि शार्कों के व्यवहार के बारे में बेहतर जानकारी और समझ शार्क के साथ सामना होने की संभावना को कम कर सकती है।
1: Sharks are often referred to as apex predators, which means they are at the top of the marine food chain. They help control populations of prey species, preventing overpopulation of some marine organisms and maintaining species diversity. By regulating the abundance of prey species, sharks indirectly influence the entire food web. They help ensure that certain species do not become too dominant and disrupt the ecological balance.
0: Dr. Butcher, New South Wales Department of Primary Industries में मुख्य शोध वैज्ञानिक हैं। उनका शोध बीच पर जाने वाले लोगों और शार्क के बीच होने वाले सामने को कम करने के लिए एक सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करने के वैज्ञानिक आधार खोजने पर केंद्रित है।
1: It's essential to recognize the importance of these creatures in maintaining the health of our oceans and the broader environment. Despite their intimidating appearance, sharks are truly wondrous animals that deserve our respect and protection. By regulating the populations of species lower down the food chain, sharks help maintain the balance of marine ecosystems. This in turn has a cascading effect on the health of oceans, which are critical for the overall health of the planet.
0: Dr. Butcher का कहना है कि New South Wales में तटरेखा पर मई और नवंबर माह में white shark अधिक देखने को मिलती हैं, जबकि अक्टूबर से मई माह के बीच bull shark अधिक दिखती हैं। Tiger shark साल भर ही इस तटरेखा का चक्कर लगाती रहती हैं।
1: There is nothing formally recognized as a shark season in New South Wales. Sharks are present in New South Wales waters all year, with white sharks present over a wide range of sea surface temperatures and bull sharks present when water temperatures are above 20 degrees. White sharks are more likely to be present within a kilometre of our coast in the middle of the day from about 11 a.m, while bull sharks are most likely to be present throughout the afternoon from midday and throughout the night.
0: Shark हमारे समुद्र का एक प्राकृतिक अंग है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तट पर शार्क और मनुष्य का सामना कभी होगा ही नहीं, लेकिन अगर तट सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए तो ये खतरा बहुत कम किया जा सकता है।
1: One of the simplest safety routines to follow is to only swim at patrolled beaches and to stay between the flags. This is the safest place to swim because lifesavers and lifeguards are there to monitor beach and water conditions and maximize the safety of all beachgoers. Pay attention to the advice of lifesavers and safety signs. Patrolled beaches may also sound shark alarms. You should always leave the water as soon as an alarm is sounded or a shark is spotted. Try to avoid surfing by yourself or when there are plenty of bait fish and diving birds about.
0: Beach पर जाने की ये सलाह Dr. Jazz Laws के हवाले से आती है, जो कि एक प्रभाव पर्यावरणविद हैं और तट सुरक्षा शोधकर्ता हैं और Surf Life Saving Australia में शोध समूह का नेतृत्व भी करती हैं।
2: The safest part of the beach is the supervised area between the red and yellow flags, where trained surf lifesavers and lifeguards keep a lookout for sharks and any other hazards. The best advice and safety tips to reduce the risk of being bitten by a shark are really to avoid swimming after dusk, during the night, or before dawn. We also recommend to swim with a buddy, that is, like, avoid swimming by yourself.
0: अगर आप पानी में हैं और शार्क आपके सामने आ ही जाती है, तो ये शार्क के व्यवहार की जानकारी आपके काफी काम आ सकती है।
2: For the most part, a shark will show no interest in a human and will just look at them as they swim past. However, if you are in the water and see a shark approach, depending on the situation, you can observe and respond to a shark's behavior. If it appears excited or agitated, showing quick, jerky movements or other erratic behavior, leave the water as quickly and calmly as possible. Try to minimize splashing and noise and do not provoke or harass or entice a shark.
0: Dr. Paul Butcher का कहना है कि हालांकि ऐसे होने के संयोग बहुत कम है, लेकिन फिर भी शार्क के हमले की तैयारी आपकी जान बचा सकती है।
1: Encountering a shark while in the water can be a frightening experience, but it's essential to remain calm. If you need to move, do so slowly and smoothly. Try to back away while maintaining eye contact. Make sure you don't turn your back on the shark. If you're swimming or snorkeling, try to stay vertical in the water. Sharks typically attack from below, so reducing your profile can be helpful. If you're with others, gather in a group. Sharks may be less likely to attack in a larger group of people.
0: Dr. Butcher कहते हैं कि पानी में जाने से पहले भी कई ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जो आप कर सकते हैं।
1: Some of the risk mitigation is at a personal level, including considering the use of personal shark deterrents. Independent testing of some commercially available products during and since the shark management strategy confirmed that none are 100% effective. But two products were demonstrably better than others, reducing interactions with white sharks and bull sharks by about 60%.
0: और डॉक्टर लॉज कहती हैं कि जिस बीच पर आप तैराकी के लिए जा रहे हैं उसके नियम जान लेना भी एक अच्छा सुझाव है।
2: We generally recommend that people visit beachsafe.org.au or download the BeachSafe app to learn more and plan how to stay safe at the beach, especially if they are heading somewhere new or unfamiliar. If you have any questions or concerns while you're at the beach, go and say hi to one of our friendly surf lifesavers or lifeguards. They will be very happy to help you.
0: ऑस्ट्रेलिया भाग्यशाली है कि देश भर में सर्फ लाइफ सेविंग ऑस्ट्रेलिया के सर्फ लाइफ सेवर्स और लाइफगार्ड का एक एकीकृत तंत्र तट पर लोगों की सुरक्षा के लिए उपस्थित है। इसका अर्थ यह है कि निरीक्षित तटों पर लाल और पीली झंडियों के बीच ही तैराकी करना सबसे सुरक्षित तरीका है।
2: सर्फ लाइफ सेवर्स एंड लाइफगार्ड्स आर प्रोफेशनल्स हु आर हाईली ट्रेन्ड टू कीप बीच गोअर्स एंड एनीवन इन द वाटर सेफ। This includes keeping a lookout for sharks with binoculars from the beach, and some may also use specialized surveillance techniques such as drones or helicopters. If they spot a shark, lifesavers and lifeguards will sound a siren or ring a bell and put up a red and white flag and ask you to leave the water immediately.
0: ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रदेशों में शार्क हमलों के जोखिम को कम करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे शार्क टैगिंग कार्यक्रम, ड्रम लाइन और शार्क जाल का लगाया जाना या हवाई निगरानी के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग। एक अनुमान यह भी है कि न्यू साउथ वेल्स सरकार का शार्क टैगिंग कार्यक्रम अपने तरीके का विश्व का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है। डॉक्टर बुचर का कहना है कि अगर पानी में टैग की हुई शार्क आती है तो तट पर मौजूद लोगों को रियल टाइम में यानी उसी वक्त इस बात की जानकारी दी जा सकती है और सचेत किया जा सकता है।
1: Sharks tagged by DPI contractors are fitted with external acoustic and identification tags. All acoustically tagged sharks can then be detected on the network of 37 real-time tag shark listing stations on the New South Wales coast. When a shark swims within 500 metres of one of these listing stations, an instant alert is sent to the SharkSmart app. Beachgoers can then download the app and set it to receive tag shark alerts at certain times and locations.
0: शार्कों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है, इसलिए सचेत रहना तो जरूरी है, लेकिन घबराकर कोई कदम ना उठाएं। डॉक्टर बुचर का कहना है कि समुद्र के इस शीर्ष शिकारी का आदर किया ही जाना चाहिए, क्योंकि ना कि ये केवल हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है, बल्कि हमारी संस्कृति में भी एक मेक है।
1: Sharks have captured the imagination of people worldwide, especially First Nations people for thousands of years, leading to a vast array of cultural references in Indigenous stories and art, as well as modern literature, movies and art. This cultural fascination has contributed to increased awareness and interest in marine conservation, which is important.
0: Australia Explained के इस अंश को प्रस्तुत किया SBS News से फिल ट्यूसक और SBS Hindi से वृषाली जैन ने।

0: में हार के वो जा रहा है कोई शब्द का। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बाहर।
1: Your news from here and hits from home.
2: SBS South Asian.

0: क्या खुद को खुदा मानते हो? क्या खुद को खुदा मानते हो? हमें मार तो दिया पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो?
1: SBS South Asian.

0: SBS Urdu, today at 3 o'clock on SBS South Asian or anytime on the SBS audio app.
1: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ, दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो?
2: कुछ भी

ऐसा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुए, हजार रातां में वह भी एक रात हुए, आंख उठा के देखे जब वह मेरे कोनी, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

ऐसा है जो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।